0: मैं केड़ा पाइया ने वंगा, क्या बात है क्या बात है। आज तक खुले अखाड़े दी क्या शुरुआत हुई है, सही कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: होर किवें हो जी?
1: बस बस वधिया। सत श्री अकाल एक बारी फिर तो, यानी मेरे वालों यानी यशप्रीत वालों, तो मेरे नाल जुड़ गए ने, तुहानू आवाज़ तो पता ही लग गया होना।
0: कौन
1: कौन
0: आज यही
1: दसो
0: रखो,
1: कौन?
0: आज दा क्विज यही रखो, आज असी क्विजो क्विजी होना। सब तो सौखा है, सानू सानू प्रोड्यूसर साहब तो आया जी कि
1: हाँ।
0: सौखा या इजी या रख लियो है ना, जो क्विज रखना सब तो सौखा क्विज हो सकता है कि आज दा आरजे कौन
1: आरजे
0: है,
1: कौन है?
0: है? जिन्हें वधिया वधिया गंद गाने बंद करा के है ते अपनी आवाज ले आया जी। सत श्री अकाल आदाब, मैं हां कृष्णा, मेरे नाल ने यशप्रीत जी ते
1: बुझारत आप ही पूछती।
0: मैं भी तो वेखनी है ना फिल्म। ए मेरे लेवल दा इजी आंसर सीगा, मैं अपने हिसाब दा चलदा पया हां। ठीक है नहीं?
1: सही गल।
0: होर सुनाओ किवें हो, ठीक ठाक?
1: बस बस ठीक ठाक। तुसी सुनाओ, तुहाडा हफ्ता किवें गया?
0: मेरा हफ्ता
1: छाए
0: मेरा
1: हो तुसी तां अज मेलबर्न दे विच है
0: हैं
1: रीलां दे विच।
0: अच्छा, मैं क्या इधर आ कुछ आज तक इधर कपूरथला तक नहीं गलबात बनी छाने वाली, मेलबर्न की करता। हाँ जी, रीला रीला रीलो रीली तो हुए पे हैं बहुत ज्यादा ना।
1: नहीं नहीं,
0: बहुत ही बुरा हाल। मैं ज्यादा गाना सुना ना आर्नेट वाला।
1: अच्छा,
0: बाबा जी कलैब का, मैं भी बाबा जी लभदा पाया कोई वधिया जे, मेरे 2K तो उपर व्यू आ जाए किसी तरीके। तुसी की कर दो वैसे अपने रील्स नू अगे तक तुसी बाकी बाबे ने छड़ दो। देखो रियलिटी सिचुएशन यही है, थोड़ा जेड़ा तरीका है ना बाबा जी तो छड़न दा, वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही तरीका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। होर
1: थोड़ा इसी नू कहंदे
0: इसको कहते हैं मूव ऑन होना, क्या यही स्पिरिचुअलिज्म
1: अगली रील दे बारे सोचन लग जाओ।
0: पर इहदा भार बहुत है ना रील्स दा, कि वंस यू बिकम अ क्रिएटर है ना, तो ये फिर उही मैं अपा मैं तो बलकीरत कल गल करते पे ही सी, तो ऑन रिकॉर्ड तो आप चलो 5-7 मिनट का जो सेगमेंट से ऑफ रिकॉर्ड आप बाद चो यही गल करते रहे कि यार कि गुलामी हो जाती एक पॉइंट तो बाद, कि जो तुसी अपनी डिजिटल परसनैलिटी विखा दें हो है ना, उनू फिर उसकी ही सरप्रस्ती करनी पैंती है। हर रोज कुछ ना कुछ सोचो, स्क्रिप्ट सोचो, ये करो। AI वगैरह जेडे आ गए बस ओदा नुकसान ही है, ओदा मेजर नुकसान यह होया AI वगैरह दे आंदा कि हुण तुहाडे कोल ज्यादा आइडियाज ने, उह तुहानू 10 आइडियाज होर दे देंदा कि इहदे उपर लिख लो इहदे उपर लिख लो इहदे उपर लिख लो।
1: बिल्कुल, पर यह है कि कई बार वधिया भी होंदा है कि तुसीं जिवें हुण तो नहीं समझ आ रहा कि हुण जिवें मैं तो कुकिंग दा मेनली करदी आं, मैनूं पता है कि मैं जिहड़े इनग्रीडियंट्स अवेलेबल है पेंट्री दे विच ओही बनाणा ते ओह कई बार AI तुहानू वधिया आइडिया दे देंदा, सोच दो कि हाँ
0: AI इनग्रीडियंट दा सब्स्टिट्यूट भी दस दिंदा कि यार मैं आह बनाना जे ए चीज ना।
1: नहीं होते, मैं रेसिपी नाल नहीं कॉम्प्रोमाइज करती।
0: ओके,
1: मैंने सिर्फ मेन्यू ही चाहिए होता कि बनाना की है, फिर होते माय रेसिपी माय रूल्स।
0: तुसी देखो गल बहुत क्यूट तरीके ना कीती कीती रेसिपी दी है, पर जो उहदा वजन सी ना उह सनी देओल स्टाइल सीगा पूरा दा पूरा। हैं
1: किवें?
0: मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो सलमान खान से ना मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली कोई नहीं, दोनों भरा ही ने उन्होंने बहुत आपस बहुत बनती छंडी है, इट्स फाइन, अपन ना चला सकते। थोड़ा किदा दा रहा जी हफ्ता?
1: मेरा हफ्ता हमेशा वधिया जांदा है ते ए वाला भी बहुत सोहना सीगा।
0: व्हाट वाज वन थिंग जेडी स्टैंड आउट कीती थोड़े लिए?
1: जुकाम खांसी तो बचे रहे।
0: वाह भाई वाह,
1: ते आंदे आंदे हो ही गया फिर फ्राइडे।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: चक्कर है ना, मैनू भी कल शाम का हल्का जहा आई हैव बीन फीलिंग की हाँ।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। ऑर्बिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਸ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ, ਯੂਨਿਟ 1, 19-25 ਸੁਮਰਟਨ ਰੋਡ, ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ। ਕਾਲ 0390-866-655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au।
3: ਬਲਜੀਤ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਰੀ ਦੇਖਣ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰ ਚਲੀਏ?
4: ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
3: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਲਰੀ ਵੀ। ਧੁੰਨਾ ਜੁਲਰਸ, 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀ ਨੋਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
5: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
6: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options vi available. Aao te apni navi Ford da test drive karo.

0: प्यारी प्यारी मूमल।
1: वाह।
0: तो कृष्ण जी, आज की जो कहानी है ना, ये एक ऐसी आइकॉनिक पिक्चर से है जो राजस्थान में अक्सर आप मेलों में या बहुत सारे लोगों के घरों में एक पोस्टर देखा होगा आपने, जिसमें एक लड़की होती है बंजारन के भेष में और एक ऊंट पे बैठा राजस्थानी पोशाक में एक सुंदर सा राजकुमार। तो ये जो पिक्चर है उससे जुड़ी ये कहानी है, मूमल और महेंद्र की। अब मूमल जो थी ना, बेसिकली ये लव स्टोरी है, ये है 16वीं शताब्दी के आसपास की कहानी। तो लोधरवा गांव की राजकुमारी थी, उसका नाम था मूमल, जो गांव आज जैसलमेर में आता है। और अमरकोट गांव का एक राजकुमार था महेंद्र, जो आज पाकिस्तान में वो एरिया है उसमें आता है। ठीक है, तो इनकी कहानी है। कहते हैं कि जो महेंद्र था, उसकी बहन की गुजरात में शादी हुई थी। तो एक बार महेंद्र अपने जीजा जी को ऊंट पे बॉर्डर तक छोड़ने गया। लौटते वक्त उसने सोचा कि मैं लोधरवा गांव में रेस्ट करूंगा, क्योंकि लंबा सफ़र था वापसी का। तो जब वहां वो रुका तो उसने देखा, उससे गांव के लोगों ने राजकुमारी मूमल की सुंदरता के बारे में बताया कि बहुत सुंदर है, और बहुत सारी उनके बारे में बातें बताई। ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी तो जग ही गई थी। और बात ये थी कि उनका स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में बड़ी अटपटी सी और बड़ी अनोखी सी तीन शर्तें थी। तो जब महेंद्र ने सुनी वो शर्तें, उसके दिमाग में लगा, यार ऐसी भी कौन सी सुंदर बला है कि इतनी खतरनाक खतरनाक शर्तें रखी हैं इसने अपने स्वयंवर में। तो शर्तें सुनो पहले। पहली शर्त थी, एक चारपाई पर आपको पूरी रात सोना है, जिसके जो धागे हैं, निवार जो बोलते हैं हम जिसे, निवार के जो धागे हैं वो इतने कच्चे हैं कि एक किलो क्या, एक ग्राम वजन भी वो नहीं सहन कर पाएंगे। पूरी रात आपको उस चारपाई पर बितानी है। दूसरी शर्त थी कि आपको गाय का दूध निकालना है एक ऐसे घड़े में जिसके पैंदे में इतना बड़ा छेद है कि पूरा एक पूरे एक हाथ के बराबर। ये तो थी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त थी, एक ऐसे दरवाजे को खोलना है जिसमें अलग अलग तरीके के ऐसे होल्स हैं जिनका मतलब कोई एक कोड के बिना वो खोल नहीं सकते। बड़ा टेक्निकल था। तो ठीक है, महेंद्र कौन सा मानने वाला था, उसने कहा चलो जी चलते हैं। तो जैसे ही महेंद्र महल की तरफ बढ़ रहा था, उसकी मुलाकात हुई मूमल से। वो कहते ना एक आंखों, कहते ना नजरों ही नजरों में दोनों को एक दूसरे को, नजरों ही नजरों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब आई शर्तों को पूरा करने की बात। तो महेंद्र ने पहली शर्त की, उन्होंने क्या किया, चारपाई पर इस तरीके से लेटे कि पूरा वजन चारों कोनों में रहा। शरीर का बीच का जो वजन था उन्होंने बिल्कुल चारपाई पर डाला ही नहीं, पूरी रात इस तरीके से उन्होंने ईजिली निकाल दी। अब दूसरी शर्त की बारी आई। दूसरी शर्त थी कि आपको घड़े में दूध भरना है, लेकिन घड़ा जो उसका पहंदा है वो उसमें इतना बड़ा छेद है कि एक हाथ के बराबर। तो महेंद्र ने क्या किया, चलाकी से अपने पैर के घुटने को वहां फंसा लिया और दूध निकालना शुरू किया, घड़ा आसानी से भर दिया। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब आई तीसरी शर्त की बात, जिसमें दरवाजे को खोलना था, और दरवाजे के छेद को कुछ एक पर्टिकुलर एक ऐसी सुपारी से खोलना था, और किसी तरीके से वो खुल नहीं सकता था। अब यहां महेंद्र फंसने लगा। तो फिर जो राजकुमारी की सहेलियां थी वो बीच में आई, उन्होंने बोला कि उन्होंने उसे बेसिकली चलाकी से डीकोड करना सिखा दिया, क्योंकि उनको भी पता लग गया था कि मूमल को भी महेंद्र पसंद आ गया है। तो स्वयंवर तो बहाना था, ऑलरेडी मूमल ने महेंद्र को पसंद कर ही लिया था। तो तीनों शर्तें मान ली और महेंद्र और मूमल ने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन महेंद्र ने समझाया कि देखो, मुझे अपने घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, तो मैं वापस आऊँगा। लेकिन एक वादा करके महेंद्र गया कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन शादी करने मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन हर रोज़ जब तक मेरे घर वाले नहीं मानते मैं तुमसे रोज़ मिलने आया करूँगा रात को। ठीक है, ये कहकर महेंद्र निकल गया। अब वादे के अनुसार हर रात उसने आना शुरू किया ऊँट पर बैठ कर। अब महेंद्र की जो पहली पत्नी थी, उन्हें पता लग गया कि ये रोज़ कहीं ना कहीं जाता है। ऑफकोर्स वो जेलिस तो होना ही था, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को बताया। तो उन लोगों ने क्या किया, जो उसका महेंद्र का पर्टिकुलर ऊंट था ना, उसे बदल दिया एक ऊंटनी से। तो महेंद्र शाम हुई फिर निकला मूमल से मिलने। तो ऑफ कोर्स ऊंटनी जो थी वो रास्ता भूल गई और वो घूमते फिरते भटकता रहा और मूमल तक नहीं पहुंचा। मूमल ने भी उसका बहुत इंतज़ार किया पर थक हार के वो भी बेचारी सो गई। अब सुबह मूमल की जो बहन थी सुमल, वो दोनों खेल रहे थे और उसने क्या किया, सुमल ने एक भेस बनाया एक आदमी का, तो वो दोनों खेल और वहीं आराम करने लगी। तो जैसे तैसे करके महेंद्र पहुंचा एक दो दिन बाद, तो उसने देखा, एक दो दिन नहीं अगले दिन शाम तक पहुंचा, तो उसने देखा कि जो मेरी मेरी कह लो प्रेमिका है या मूमल है, वो किसी उसके आसपास में कोई और सोया है। तो वो एक गलत फहमी का शिकार होके गुस्से में चला गया क्योंकि उसका दिल टूट गया था ऑफकोर्स। तो ये तो यहाँ ये इसका कह लो पार्ट वन कह सकते हैं हम इसको, मूमल और महेंद्र की कहानी का, कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग से उनकी जो लव स्टोरी में खटास आ गई। अब दिन बीत गए, काफ़ी दिनों तक मूमल इंतज़ार करती रही, हर रात उसने वेट किया पर महेंद्र आया ही नहीं क्योंकि वो तो नाराज़ था। और महेंद्र ने क्या किया, अपने जो सैनिक थे दरवाजे पे उनको कह दिया, अगर मूमल के गांव से कोई भी संदेश या कोई भी इंसान आता है तुम्हें उनको कह देना है कि मैं मर चुका हूँ। तो इंतज़ार करते करते मूमल ने एक दिन सोचा कि आज तो मैं जाती हूँ महेंद्र को ढूंढने। मूमल ने धरा बंजारन का भेस और बंजारन के भेस में मूमल निकल पड़ी अमरकोट महेंद्र से मिलने। महेंद्र ने कह ही दिया था सैनिकों से कि मेरे बारे में तुम बोल, अगर कोई पूछे मूमल के गांव से तो बोल देना वो मर चुका है। अब जैसे ही अमरकोट मूमल पहुंची, उन्होंने सैनिकों से पूछा कि मुझे महेंद्र से मिलना है। उन्होंने कहा महेंद्र, वो तो कई दिन हो गए उन्हें गुजरे। ये सुनकर मूमल सहन नहीं कर पाती, उनके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है महेंद्र के दरवाजे की चौखट पर। जैसे ही महेंद्र को भनक लगती है वो भाग कर आता है, ये सीन उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो भी वहीं पे पागल हो जाता है और दम तोड़ देता है। अब कहते हैं ना कि लिटरेचर में तो इस कहानी के बहुत अलग अलग सॉफ्ट वे में किस्से सुनाए, क्योंकि लिटरेचर का या किताबों का कहानियों का काम ही होता है कि उसकी हैप्पी एंडिंग करें, पर ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये कहानी लोधरवा के गाँव के बच्चे बच्चे को पता है। तो ये थी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। कैसी लगी आपको मूमल और महेंद्र की कहानी?
1: वेरी ट्रैजिक, हर कहानी की तरह वेरी ट्रैजिक। वैसे देखो मतलब मेरा बस पॉइंट ये है, मूमल सिस्टर इफ यू आर लिसनिंग टू मी, बंदा व्याया भी नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त होनी चाहिए। छोटी सी चीज प्लीज, टेक्निकलिटी तो चलो क्या बात।
0: अच्छा मतलब, यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते प्यार और इश्क में सब कुछ जायज है।
1: अच्छा देखो पितृसत्ता मतलब क्या ब्यूटीफुल चीज है ना। खुद व्याया आदमी ऊन तो डिग डिग डिग डिग डिग डिग कर, डिग डिग भी नहीं कर दो ऊन तो, ब्रीडिंग मशीन पर आ रहे हैं और माइंड कर रहे हैं कि यार ये किसी होर आदमी दे ना, ब्रो तेरी वाइफ तेरे घर च वेट कर रही है। मूमल जी अमेजिंग है, लोक कथा है ना। हाँ हर लोक, मैनू ओ वाली बहुत बढ़िया लगी सी वैसे, थोड़ा जा छोटा जा दोबारा सुना दो।
0: हवा महल कौन सी? अच्छा हवा महल, ओहो हो,
1: एक बार यो भी दस
0: पन्ने फिर से फलटू।
1: तरदा तरदा जा दस दो।
0: नहीं हवा महल, हाँ हाँ हवा महल की कहानी मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोटा के पास ही जयपुर है। तो आपको पता है हवा महल बड़ा ही फेमस है, आज जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले हवा महल की पिक्चर सामने आती है क्योंकि आइकॉनिक एक लैंडस्केपिंग है। और क्या हवा महल अपने आप में एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव नहीं थी, तो हवा महल बना कैसे उसकी ये कहानी है। बेसिकली सुन के तो लग ही रहा है कि हवा महल जहाँ के हर कोने से हवा आती है, हाँ ये भी रीज़न है क्योंकि उसका वेंटिलेशन कुछ इस तरीके का था कि बहुत ठंड, आज भी अगर हवा महल देखने जाओ ना तो आपको बहुत वहाँ बहुत हवा चलती है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन, पता नहीं वो टेक्निकल क्या है लेकिन हवा महल में ठंडी हवा बहुत चलती है। लेकिन इसकी कहानी क्या है और ये बना कैसे? बेसिकली जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप जी, उस टाइम पे जयपुर बहुत सुंदर था जो कि आज भी है, लेकिन शहर के बीचों बीच सारे समारोह सारे उत्सव होते थे। तो और उस जमाने में जो पर्दा प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। तो जो सवाई प्रताप जी थे ऑब्वियसली उनको उनकी रानियों ने कहा ही होगा कि हम मिस कर जाते हैं. तो सवाई प्रताप जी ने एक प्लान बनाया कि कुछ ऐसी तरकीब लगाई जाए कि शहर के बीचों बीच जो भी समारोह जो भी उत्सव होते हैं वो शाही परिवार की औरतें भी उसका लुत्फ उठा सके. तो उन्होंने ऑब्वियसली उनसे खुद आइडिया तो आ गया था दिमाग में, लेकिन उसे पिक्चर को रियलिटी में कैसे लाएं, तो उन्होंने अपने जो फेमस आर्किटेक्ट थे लालचंद जी उन्हें बुलाया. लालचंद जी को बुलाया और उन्हें अपनी पूरी पूरी थॉट प्रोसेस बताई कि कुछ ऐसा तुम बनाओ, ऐसी एक इमारत या ऐसा एक किला बनाओ जिसमें अंदर से क्या होता है बाहर किसी को पता ना चले और बाहर का अंदर वालों को सब दिख सके, मतलब अंदर की भनक ना लगे. कुल मिला के बात यह है. तो लालचंद जी चले गए टास्क लेके. तो लालचंद जी ने बहुत ज़्यादा सोच के बहुत ज़्यादा योजना बना के और प्लानिंग के साथ वो एक किले का नक्शा लेकर आए और उन्होंने वो ऐसी इमारत बनाई जिसमें 953 झरोखे हैं. झरोखे यानी खिड़कियाँ. तो उन खिड़कियों से जो शाही परिवार की औरतें हैं बिना किसी टेंशन के बाहर का जो भी समारोह या जो भी उत्सव है उसका लुत्फ उठा सकती थी. तो आज भी आप अगर जयपुर जाएं तो हवा महल ज़रूर जाएं और उन झरोखों से झांक के ज़रूर देखिएगा. आपको भी लगेगा कि आप भी उस इतिहास के उस झरोखों से झांक रहे हो. तो ये है हवा महल की कहानी. अच्छा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं भूल गई कि जो हवा महल था लालचंद जी ने वो ऑब्वियसली ये टास्क तो था कि कुछ ऐसा बनाना है जिससे अंदर का बाहर ना दिख सके और बाहर का सब दिख सके. तो जो सवाई प्रताप जी थे ना वो कृष्ण भक्त थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस हवा महल का जो नक्शा था या डिज़ाइन था ऐसा बनाया जो देखने में आज भी अगर आप हवा महल को देखें तो आपको दिखेगा कि वो कृष्ण भगवान का मुकुट है. तो वो डिज़ाइन लेके लालचंद जी ने हवा महल बनाया और उसमें बनाए 953 झरोखे. तो ये थी हवा महल की कहानी.
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल. 100 पॉइंट्स टू सवाई प्रताप जी, ते मेरे बोलो -22 महेंद्र बाहुबली. जसवंत साहब ने पूछा कि महेंद्र बाहुबली है, मैं नहीं सर वो नहीं है
0: बाहुबली.
1: देवसेना.
0: जी जी. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, राजस्थान के छोटी छोटी हिस्टोरिकल प्लेसेस आप जाओ ना तो सिर्फ घूम के फोटो खिंचाने तक सीमित ना रखा करिए, आप वहाँ की हिस्ट्री जरूर जाने करिए.
1: मेरे ख्याल ना इफ अपार्ट फ्रॉम पंजाब जे ज्यादा देखा जाए तो राजस्थान ते एमपी को बहुत ज्यादा कल्चरली रिच स्टोरीज है.
0: बाकी सारी फिर भी संभाल के भी रखी है सारी.
1: मैं वही कहना चाहिए कि राजस्थान ने संभाल के भी रखा हेरिटेज विच इज गुड. मतलब जिन्ना संभाल के रखे आई एम प्रीटी मश्योर कुछ ना कुछ तक खराबी कोई भी सोनू लव्स ना शीनम एदा करके लिख के गया ही होगा किसी ने किसी ओहदे उपर. ये करना नहीं चाहिए भाई, कोई करता भी होगा आसे-पासे नूं रोक के
0: यहां तक कर देते लोग.
1: लोकी इतने नहीं बचते.
0: पर खैर राजस्थान में ये भी खासियत है कि जितने भी आज के जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चले जा रहे हैं ना, उन्होंने अपने फोर्ट्स को कन्वर्ट कर दिया पैलेसेस में. तो वो उन्होंने उसको कमर्शियलाइज कर दिया है, तो वो उस तरीके से वो इमारतें संभली भी हुई है. और अगर आपको मतलब लुत्फ उठाना हो किले
1: एक राजकुमार है ना, मैंने उसका नाम नहीं याद आ रहा, ही इज अ सुपर मॉडल आल्सो राइट.
0: अच्छा.
1: और राल्फ लॉरेन वगैरह वास्ते कैटलॉग्स शूट करते हैं क्योंकि ही प्लेज पोलो.
0: सारे करते हैं वो तो, पोलो तो खेलते ही.
1: हाँ ते वो मतलब काफी गुड पर्सनालिटी है, कभी याद आया थोनू मैं दसांगा. बड़ी फॉलोइंग बहुत है पर.
0: अच्छा. नहीं नहीं राजा तो जितने भी है फॉलोइंग की क्या, जो कोटा के राजा है सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, पर वो आज भी मतलब काफी एज हो गई लेकिन अगर वो निकलते हैं तो मतलब पता लग जाता है कि हाँ
1: राजा साहब
0: कमर साहब निकल रहे हैं.
1: उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर नहीं शुरू किया था.
0: मतलब कैरी करते ना, कहते ना कि अब जैसे आप फिल्म स्टार्स की बात करते हैं तो इन्हें भी अपना जो कल्चर है अपना जो लाइफस्टाइल है वो कैरी करना पड़ता है भले ही अंदर से इनके पूरे अकाउंट्स खोखले हो.
1: अब सैफ दी वो हैगी ना, सैफ कहंदा कि कहंदा कि वो जड़ा साडा पटौदी हाउस है सारा हो वो मैनू बाय बैक करना पिया कि जदों पुराने बुजुर्ग किसी वेले च है ना दे गए लीस वगैरह दे ते मैं 200-250-300 पता नहीं किन्ना करोड़ खर्चा कि जस्ट टू गेट इट बैक. तो वो भी हुण कहंदे कि they have made it into some sort of hotel hana ki vadiya yaar
2: ਗੁੱਡ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂ
0: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਪੁਲਸ
2: ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ
0: ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ
2: ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
0: ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
0: ਕੋਈ ਮਹਿਲ
2: ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੰਕਾ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਯੈਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੁਟ ਸ਼ੁਕੜ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੁਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ
2: ਵਾਹ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ
0: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਨੇ ਜਪਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ ਗਾਇਸ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਹੈਲੋ ਕੀ ਤੀਰਥੀ

0: पार्टी नजर है। बोला
1: ओए पुली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते बसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2 होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते
3: 0433-280-252 ਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਿੰਡਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set.

0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au.
2: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: हाँ जी, हाँ जी।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
1: किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाडे करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तों पहलां ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3 अते 4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तों पहलां 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करदा है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करदा है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवें दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमीग्रेशन नू जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल।
5: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0403-280-252 ते। ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ 2।

रेडियो हां जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 18 जून 2026 वीरवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया ते दुनिया जान दीआं खबरां लैके आए हैं। शाम दे इस प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच सब तों पहलां इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करदे हां। चंगी खबर, अमरीका ईरान जंग खत्म होने के उत्ते हुण अधिकारक मोहर लग गई है। आखिरकार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शांति समझौते के उत्ते हस्ताक्षर कर रहे हैं। फ्रांस के चल रहा जी 7 शिखर समिट उस पल का गवाह बनया जो ट्रंप ने वरसाए महल के ईरान के समझौते के उत्ते हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने उस समझौते के उत्ते डिनर के दरमियान साइन किए जिसकी मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन के महल के अंदर की जा रही थी। यह पल अमरीका ते ईरान के दरमियान टकराव को खत्म करने की दिशा के महीनों तो चल रही गलबात के अखीर के एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बन के सामने आया। एक वीडियो सामने आई है जिस मैक्रोन ते होरना मेहमान डिनर टेबल के उत्ते बैठे नाल डोनाल्ड ट्रंप पीस एग्रीमेंट की हार्ड कापी के उत्ते हस्ताक्षर कर रहे हैं। ट्रंप दे हस्ताक्षर करदे ही उत्थे मौजूद मेहमाना ने ताली बजा के इसका स्वागत किया। कई दिनों तक इस खबर नू सीक्रेट रखने तो बाद बुधवार के दिन अमरीकी अधिकारियों ने मीडिया के नाल ईरान के नाल हुए इस MOU मनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे जानकारी दी। नाम ना दसन की शर्त के उत्ते उस ड्राफ्ट के बारे भी अधिकारियों नू दस्या गया जिस दे विच ईरान ने हाले तक कोई भी जानकारी जारी नहीं की है। दस दिए कि अधिकारियों के मुताबिक समझौते दे विच अमरीकी ड्राफ्ट दे विच कुछ अहम गल्लां शामिल की गई जिवें ईरान दे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नू घट करन दे लई और हेठले पद्धर ते लैके आन दे लई ईरान नू किया जाएगा 60 दिनों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट तो बिना किसी टैरिफ के गुजरन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इस डील के भविख के शुल्क वसूलन की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता और यह शुल्क ईरान ही वसूल सकता ओमान के नाल रल के। डील के लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के खिलाफ हालिया हमलों तो बाद उन्होंने खेतरी अखंडता की सुरक्षा तय करने के बारे भी एक दलील रखी गई है। दस दईए कि अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ते अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एतवार के दिन समझौते के उत्ते डिजिटल रूप के हस्ताक्षर कर चुके सी पर हुण शुक्रवार के दिन यानी कि भलके स्विट्जरलैंड के रस्मी तौर के उत्ते हस्ताक्षर किए जाने। लेकिन इस समझौते के बारे जानकारी देने बारे एक अमरीकी अधिकारी ने यह भी दसिया है कि वरसाए के पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस करके हुण कल दे दिन की होएगा इस दे उत्ते भी पूरी दुनिया की निगाह ने। उधर अमरीका ते ईरान दे दरमियान हुए समझौते ते हस्ताक्षर किए जाने तो बाद ईरान दे संसद दे स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाफ ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट तो फीस वसूली जाएगी। जबकि दोहां धिरां दे दरमियान हुए समझौते च कहा गया सी कि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट तो गुजरन वाले जहाजा तो कोई टोल नहीं वसूलेगा, कोई फीस नहीं लगाएगा। पर गलीबाफ ने सरकारी टीवी के उत्ते इंटरव्यू दिंदिया कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट जंग तो पहला वाली स्थिति दे विच वापस नहीं जा सकता। ईरान नू होर्मुज़ स्ट्रेट के उत्ते पूरी तरह के नाल अधिकार लैण दा हक है ते जाहिर जी गल है कि असीं इहदियां सर्विसिज़ दे लई शुल्क वसूलांगे भी। जिक्रयोग है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बेंस के G7 समिट के दरमियान होने वाले समझौते के उत्ते MOU के उत्ते हस्ताक्षर करन तो बाद गलीबाफ ने यह बयान दिता है। नाल ही एक होर विवादित बयान भी दिता है। गलीबाफ ने कहा है कि अंतम समझौता हो गया पर बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप नू सिखरले कमांडर हज कासम की हत्या का मास्टरमाइंड भी दसिया। दरअसल मोहम्मद बगर गलीबाफ ईरान की गलबात करन वाली टीम का या उस वफद का हिस्सा ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह जिम्मेदारी मन ना होंदे हुए भी निभानी पै रही है। मोहम्मद बगर गलीबाफ ईरानी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन यानी IBC नू दिते एक इंटरव्यू दे विच ये भी कह गए कि मैं खुद वफद की टीम दे विच शामिल नहीं सी होया, मेरा मन नहीं सी करदा पर फिर भी मैं काम किया। और ट्रंप ने हज कासिम की हत्या की है, उसका मास्टरमाइंड जनरल सुलेमानी पूरे इस्लामी जगत के लिए काफ़ी ज़्यादा रुतबा रखते सी। उन्होंने ट्रंप का जिक्र करदिया कहा कि की तुहानू लगता है कि मेरे लिए अजिहे व्यक्ति दे नाल किसी भी टैक्सट दे उत्ते कोई हस्ताक्षर करना आसान होएगा।
ਬਹਿਰਾਲ ਗਲੀ ਬਾਫਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ MOU ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ MOU ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
4: लो जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते बसाते।
0: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 garewalvisasolutions.com.au ते जाओ थोड़ा कोई हल करिए
1: किचन का स्टाइल डल लगता बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
0: आई कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
0: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टर्न विच वी तुहाडी सेवा विच

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਲਬਰਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ .edu.au ਤੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕੋ।
2: RTO 3075 ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਤਰੁਗਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ, ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ
3: की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला।
6: ओए बोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
7: बोले ने कसूते फसाते।
6: ओए बोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए 2
8: Ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
9: सोना चाहिदा,
10: भरोसा चाहिदा,
9: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
3: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल
4: दिला दीजिए ना।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जम कै साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मनै

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप कांकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़ी है सुरा सिदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महामल सूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा ताके रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, करिए शब्द सची टक।

आप श्री मुख वाग्पाद सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेक पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जान क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाय नमस्तं अभाय नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति बभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगक उग हरता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सत दाता दयारंग अछेती अपेदी अनाम अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेख अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जैन रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालांकान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदिष्टे तरम सर्वां परिणांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश।

तंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैब हिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम है गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमाम है रजूअल निदान हरीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वगवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईश है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुलुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के धरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अग्रताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अग्रताकृता है तरनीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तर निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूप।

सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार धन सुध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गौन कुजात निवारे पारी पजान को पूर्व बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुब अंकुना के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गुजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुबत कौन कने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरन दुबा सुसाज सनह

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा मैं कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारियै चुन चुन सत्र हमारे मारियै आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरियास तुझो करियो रच्छा राख लो मोय राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: अंतर आत्म है समाले आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुर पेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

0: जालधाल महियाल गुप्तो वरत गुड़ सबदी देख निहारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: पतत पावन भगत वशल कृपा निदान शब्द पार ब्रह्म साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन मुकद्दस गोद विच बैठ के गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे हाजरियां भर रही गुरु की साजी नवाजी साध संगत वडभागे हां जो नेता प्रत सतगुरां दे दर्शन दीदार करके अपनी जिंदगी दियां इन्हां कीमती घड़ियां नूं सवारन दा यतन कर रहे हां। जिथे आप जी जुड़ के बैठे हो उथे वख वख चैनलां दे माध्यम राही देशां विदेशां विच संगतां बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु जी की पावन बाणी नाल जुड़ के सांझ पा रहियां हन। इस अस्थान दी मर्यादा दे मुताबक जो अमृत वेले

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मित्रों, अपने जीवन में एक सुंदर आदत अवश्य बनाइए। दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। आपकी आस्था जिस भी स्वरूप में हो, ईश्वर के नाम का स्मरण आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मकता और आंतरिक शांति का संचार करता है। यदि सुबह समय ना मिले तो दिन में जब भी अवसर मिले, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ क्षण भगवान के नाम का जप अवश्य कीजिए। आपने यह तो अवश्य सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम, किंतु यह केवल एक कहावत या एक लाइन नहीं है। इसके पीछे कई शास्त्रीय प्रमाण हैं। जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, इसका हमारे वैदिक ग्रंथों में नाम महिमा का अत्यंत गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने जीवन भर अनेक पाप किए, किंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। उसका उद्देश्य भगवान का स्मरण करना नहीं था, फिर भी भगवान के पवित्र नाम की शक्ति से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसे दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। राम के नाम की महिमा चली है तो एक बड़ी रोचक घटना याद आ गई। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ गुजरात में कथा करने गए। 7 दिन की भागवतम कथा समाप्त हुई। यजमान ने प्रेम पूर्वक उस महात्मा को दक्षिणा देनी चाही। महात्मा ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे शिष्य हैं जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए, इनको आप दर्शन करवा दीजिए। सेठ के यहां एक नौकर काम करता था, जिसका नाम था रामजी लाल। सेठ ने रामजी लाल जी को पैसे दिए और कहा, पूरे सम्मान के साथ इन महात्माओं को दर्शन करवाओ द्वारकाधीश जी के। अब रामजी लाल आगे आगे, पीछे वो साधु। आखिरी बस थी तो फटाफट साधुओं को बस में बिठाया। अंदर केवल 5 लोगों के बैठने की सीट बची थी। वो उनको वहां बिठाकर बोला, महाराज आप टिकट मत लेना, मैं बस के ऊपर छत पर बैठा हूं। कंडक्टर आपको बोले तो बोल देना, टिकट मैं लूंगा। अब बस चल पड़ी। कंडक्टर साधुओं के पास आया और टिकट लेने के लिए बोला। क्या हुआ आगे बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो बस में बैठे साधुओं को जब कंडक्टर ने टिकट लेने के लिए पूछा तो वो बोला, हमारी टिकट तो राम जी लेंगे। कंडक्टर ने पूछा, राम जी कहाँ हैं? वो बोले, ऊपर। कंडक्टर कुछ देर सोचा और बिना टिकट दिए आगे चला गया। कुछ घंटों के बाद बस द्वारिका पहुंची। सब साधु और नौकर नीचे उतरा। राम जी लाल ने साधुओं को टिकट के पैसे देने चाहे और कहा, महाराज ये लीजिए पैसे, आपने टिकट ली होगी ना, तो आपका खर्चा नहीं करवाना, सेठ जी ने बोला था। वो बोले, हमने तो टिकट लिया नहीं। हमने कहा, तुम लोगे, क्या तुमने भी टिकट नहीं लिया? नौकर बोला, कंडक्टर मेरे पास आया ही नहीं। सभी साधु उस नौकर के पांव छूने लगे और बोले, तुमने आज बड़ा ज्ञान करवा दिया। नौकर बोला, आप ये क्या कह रहे हैं महात्मा, मैं तो मामूली सा नौकर हूं। तब महाराज बोले कि जब एक व्यक्ति का नाम राम लेने से हम द्वारका पहुंच सकते हैं, वो भी फ्री में, तो सोचिए असली राम का नाम लेने से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो क्या समझे, राम कहो या श्याम, नाम लेते रहिए और आनंद लूटिए। बृहन नारदीय पुराण में स्पष्ट कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर्नियता। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही आत्मिक कल्याण का मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही कारण है संत महापुरुष बार बार नाम स्मरण पर बल देते हैं। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। नाम का जप मन को शांत करता है, हृदय को पवित्र करता है और जीवन में आशा तथा उत्साह का संचार करता है। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताजा रहती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने के लिए दिल हमेशा बेचैन सा रहता है। ऐसे ही चंद लम्हे और कुछ गीतों के साथ मैंने अपना बचपन, मैंने अपना जीवन गुजारा है और आज भी ये गीत मेरे दिल के करीब है, क्लोज टू माई हार्ट।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।